श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सतयुग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर तरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुरु नानक निकट बस।

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन ग्यंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तै अगणत, तिनका मोह भया मन मद का। चौरासी लख जो ने उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। मन ब्रह्मादिक रुद्रादिक, काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाई है परमार्थ, सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद, आद जिस कोय न जाने, शिव ब्रंच तर ध्यान, नित जिस वेद बखाने। निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समर्थ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथुरा रसना रसै, श्री सतनाम करता पुरख, गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समर्थ गह करिया, ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को, फुन त्रम तुजा फहरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कछु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं, पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग, सो रंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप, रहे लिव तार ना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके, मन इच्छित ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड सुबर, सदा सबे दर्त नागर। संत मराल करै कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर कर बे कौ, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरै फिरत सगल जुग, कबहो को पावै आत्म प्रगास को। वेद बाणी सहत बरंच जस गावै जाको, शिव मन गह नात जात कबलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत, तेज पुंज तिहो लोक प्रगासे। देख दर्श पटक प्रम पजत, दुख परहर सुख सहज बिगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत, आलस मुह जो कुसम सुभासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर, साचो तख्त गुरु रामदास। तारियो संसार माया मद मोहत, अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत, रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ।
दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एहो तथ ताहे कहा परवाह काहू की जा कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई अपने आप ही ओ पायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व खोजंत फिरे अबनासिया चाला जोनी संभव पुरखोत में आपार परे करण कारण समर्थ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस ओहियो। गुर अमरदास करता

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिद पावै सोई रामदास गुर बल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मान तुम मली अगर प्रगट सुबास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जीही कश कही ना जाई सोडी सिरिट सगल तारन कहो अब गुर रामदास कहो मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै।

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। मोह मल बिवस कियो काम गह केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो चाड़ियो। जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्नै भव सागर बंदियो सिख तारे सो प्रसन्न। सिर आत पात

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससड़ सुइया किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पी टहदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण अपार पहला वत सियाण कै ता की चै वापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लहु मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तिस सौ नेहो ना की चई जे दिसै चलन हार नानक जिनी एव कर बुझिया तिना मिटो कुरबान जे तू तारू पाण ताहू पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वन्याए नी कपरी चढ़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी सतगुर सिंह आलाए बेड़े डुबन नाहे पौ नारक दुनिया कैसी होई।

राम नानक वे प्रवाहो सो किरत न मिटई राम। लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर महला तीजा। लाहौर शहर अमृतसर सिफती दा घर महला पहला। उदो साहे क्या निशानी तोटना आवे अन्नी। उदो सी करे ही उठी कुड़ी रनी तम्मी। सती रनी करे से अपारो मन कूड़ी कमी। जो लेवे सो देवे नाही खट्टे दम सहमी। पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन। कै दोखड़े सड़े ओहे काली होया देहुरी। नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहा। जैसे ती मेरा संग जित डिठै तन पर फड़ै चढ़ै चवगण मन। रज ना कोई जीव्या पहुंच ना चलिया कोए। ज्ञानी जीवै सदा सदा सुरती ही पत होए। सरफै सरफै सदा सदा एवै गई विहाए। नानक किसनो आखिया विण पुछिया ही लै जाए। दोस ना दे और आए नो मत चलै जा बुढ़ा होवै। गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पमना खाती टोवै। पूरे का किया सब किश पूरा कट वध किश नाही। नानक गुरमुख ऐसा जाणै पूरे महे समाही। सलोक महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अभ्यागत हिना आखी है जिनके मन मैं परम। तिनके दिते नानका ते हो जिहा धर्म। अपै निरंजन परम पद ताका पीख कहोए। तिसका पूजन नानका विरला पाए कोए। होवा पंड जोत की वेद पड़ा मुख चार। नवा खंडा वे जानिया अपने चज विचार। ब्राह्मण कैली कात कंजका अणचारी का तान। फिटक फिटका कोड बदिया सदा सदा अभमान। पाहे ते जाहे विसर नानका एक नाम। सब बुद्धि जाली है एक रह तत् ज्ञान। माथे जो तुर लिखिया सो मेट न सकै कोए। नानक जो लिखिया सो वर्तदा सो बूझै जिसनो नदर होए। जिनी नाम विसारिया कूड़े लालच लग। तंदा माया मोहनी अंतर तसना अग। जिन्ना वेलना तूंबड़ी माया ठगे ठग। मन मुख बन चलाई है ना मिली वगसग। आप भुलाए भुलिया आपे मेल मिलाए। नान गुरमुख छुट्टी है जे चले सतगुर पाए। साला ही साला हना पी सच्चा साला है। नानक सच्चा एकदार बीबा पर हरिया है। नानक जय जय मैं फिराऊं तै तै साचा सोए। जय देखा तै एक है गुरमुख प्रगट होए। दुख विसारण शब्द है जे मन वसाए कोए। गुर कृपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए। नानक हां हां करते खप मोए खून लख्या संख। सतगुर मिले सोबर है सच्चे शब्द अलंख। जिन्ना सतगुर एक मन सेवया तिन जन लागो पाए। गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाए। से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए। नानक होर पत साहिया कूड़िया नाम रते पातशाह। जो पुरख है कर भगती नार है तलोचे भगती पाए। बौरा सालने सवार दी खट रस मीठे पाए। त्यो बाणी भगत सलाह दे हर नाम चित लाए। मन तानो तन अगै राखिया सिर वेचिया गुर अगै जाए। पै भगती भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए। हर प्रवे प्रवाहो है कित खादे तिपताए। सतगुर कै पाणे जो चले तिपता सह हर गुण गाए। तन तन कल जुग नानका जे चले सतगुर पाए। सतगुरु ना सेवयो शब्द ना रखियो उर तार। तिगत ना का जीव्या कित आए संसार। गुरमति पौ मन पवै ता हरस लगै प्यार। नाव मिले तुर लिखिया जन नानक पार उतार। माया मोहे जग परमिया कर्म से खबर ना होए। काम क्रोध मन हिर लया मन मुख अंधा लोए। ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागै सोए। नाम रतन प्रगासिया मन तन निर्मल होए। नाम ही नगटे फिरे बिन नामे बैरोए। नानक जो तुर करतै लिखिया सो मिट न सकै कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर कै शब्द विचार। नाम पदार्थ पाया तुट भरे भंडार। हर गुरबाणी उचर अंतना पारा वार। नानक सब कारण करता करै वेखै सृजनहार। गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकार।

लियो जरा तन जीत, कहो नानक पज हर मना, औद जात है बीत। बिरद पयो सूजै नहीं, काल पहुंच्यो आन, कहो नानक नर बावरे, क्यों ना पजै भगवान। धन धारा सम

नानक साची जान, पतत उदारन पै हरन हरिया नाथ के नाथ, कहो नानक तह जानिए सदा बस्त तुम साथ। तन तन

तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोय कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जन

काट काट में हरजू बसे संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान उस्त निंदया नाहे जेह कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान पै काहू कौ देत नह नह पै मान त्यान कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जेह बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग कहो नानक सुन रे मना तेह नर माथे पाग जेह माया ममता तजी सब ते पयो उदास कहो नानक सुन रे मना तहकट ब्रह्म निवास जेह प्राणी हौ मैं तजी करता राम पशान कहो नानक वह मुक्त नर एह मन साची मान पै नासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम निस दिन जो नानक भजै सफल होहे तह काम जेह बा गुण गोबिंद पजह करण सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना परह न जम कै ताम जो प्राणी

और न लेत उधार। जो सपना अर्पेख ना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस्दिन माया कारण प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जह चीत। जैसे जलते बुध बुदा उपजय बिन सह नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कशु ना चेतई मद माया कै अंद, कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख को चाहे सदा सरन राम की लेह, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह। माया कारण ता वही मूर्ख लोग या जान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोविंद नाम, कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई मद माया कै अंद, कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख में बहु संगी पै दुख में संग ना कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंद। मन माया मैं रम रहयो निकसत नाहिन मीत, नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई, चितवत रहो उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए, कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे
जग सुपने ज्यों जान, इन मैं कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को, बिन सैशन मैं मीत, जह प्राणी हर जस कहो, नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। एक भगत भगवान, जह प्राणी कह नाहे मन, जैसे सुकर स्वान, नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजित नहीं नित, नानक एह बिदहर पजाओ, एक मन होए एक चित। तीर्थ बरत अरदान कर, मन मैं तरै गुमान, नानक निफल जात तह, ज्यों कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे, नैन जोत ते हीन, कहो नानक यह बिद पई, तऊ न हर रसलीन। निज कर देखियो जगत मैं, को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है, तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है, जान लिहो रे मीत, कह नानक

जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है, परो आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ, कहो नानक एह बिपत में, टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो साधु रहयो, रहयो गुरु गोबिंद, कहो नानक एह जगत में, किन जपयो गुरमंत। राम नाम उर मैं गहयो, जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उतारो। तम संसार चरण लगतरी है, सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौशकिया लाप संग रागनी पांचौ थाप गोंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशको बारा खौ खटियाओ पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी ले पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए सरस बान औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं

उजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और अम्मा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गावै पांचों संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यो पांचों थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावै पांचों संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुनगुनी ऊचे सुर सुहो पुन कीनी मेघ राग स्यों पांचों चीनी बैरा तार गज तार के दारा जबली तार नट औ जल तारा पुन गावे शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अरदास एको ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमरै कर रावण ते आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया की कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसी दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारा की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारिया सचियारिया की कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु आप जी दे गुरसिखा नू गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इनान आप जी दे गुरसिखा का मन नीवा मत उची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाने दी सेवा करदिया अनेका भुला हुई होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शन योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शन दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुला हुई होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शन योग है बख्शन दी कृपालता करनी जी।

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे ऐ गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे। हर सिमरत बिनसै सब दुख, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे। हर सिमरत बिनसै सब दुख, रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै। सिमरत पावन तन मन सुख, देख स्वरूप पूर्ण भई आसा। दर्शन भेटत उत्तरी भुख, चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio.

अहंकार, असंख जप, असंख पाव, असंख पूजा, असंख तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर मुह पख सार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पहावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ यार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे,

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

गावह चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सुवारे, गावह इंदासन बैठे, देवतियां दरनाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़ न रखी सरे,

सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जोग

माता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तब ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरुख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड अवर ना कोई, तू जोग

प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान कलाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोट दीसाल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान।

पाया नाम निदान, अंतर हर सरब रहया चूका मन अभिमान, हृदय कमल प्रगासया लागा सहज ध्यान, मन निर्मल हर रब रहया पाया दरगह मान। सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार, हों मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार, हों तिन कै बलिहार नै जिन्ना नामे लगा प्यार, सेई सुखिये चौ जुगी जिन्ना नाम अखुट अपार। गुर मिलिया नाम पाईए चूकै मोह प्यास, हर से ती मन रब रहया।

से निर्मले हों सद बलिहार है जास। हृदय जिनका हर बसै तितकट है परगास। मन मेरे हर हर निर्मल त्याय। धुर मस्तक

गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

हर दरगाह पत खोए, हम मैं गुरमुख खोइए, नाम रत्ते सुख होए। मेरे मन अहनस पूर रही नित्यासा, सतगुर सेव मोह पर जलय, कर ही माहे उदासा रहाव। गुरमुख कर्म कमावे बिगसै, हर बैराग आनंद, अहनस भगत।

जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ शरणाई पाए हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह चरण

अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निश्चल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाइए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन हो वह शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात जिनका पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तान मान तहन अर्पी सबो सगल वारिय ए जिंद देख सुने हदूर साध कट कट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवां।

नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार रहा।

थान खंतर रव रहया प्रभ मेरा परपूर। सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजोन जहान। नानक जपिया सच नाम हों सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना,

नदर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन्ही कीत।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन ना आवन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाखिया

राजन रिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मजन इशनान रसना उचरै गुणवती कोई न पुजै दान दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान।

गुर जेवड़ अवर न कोय, दूजा थाओ न को सुजै, गुर मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले, सगल पदार्थ तिस मिले, जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा, सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है, करण कारण समरथ, से मथे नेचल रहे जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया, पै भंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अग खंड, जिन गुर सेविया अपना, जमदूत न लागै डंड। गुर नाल तुल न लगई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना सच छड जासी लख करोड़, सर पर उठी चलना छड जासी लख करोड़, लख

रहाउ। जिचर वस्या कंत घर जियो जियो सब कहात। जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पुछे तेरी बात। पेयड़ै शह सेव तू साहुरड़ै सुख वस। गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे न लगै दुख।

प्रभु मन मेरे सर्व को आधार, गुर के चरण मन माहे त्याय, गुर के चरण मन मह त्याय, छोड़ सगल सियान पा साज शब्द लिवलाए रहाओ, दुख क्लेश ना पौ व्यापै गुर मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे, हौं तिन कै बलिहार नै जे गुर की पैरी पाहे, साध संगत मन बसै साच हर का नाउ, सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ, श्री राग महला पंजवां संच हर तन।

करणी सार आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरे आपा सार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दो कृत सो कृत मंधे संसार सगलाना दोहूं।

वड पुरख सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

सच्चा नाम सास गिरास न विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाईए सच नाम गुणतास।

नानक गुरु शरणागति मरै नहावै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लाह।

दर दर वेश रसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पूछना साजे पूछना टाहे पूछना दे वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करन करे सबना

जाए, नेत्र वै सुहागणी साची नदर रजाए, साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है, कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी।

सच्चो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानी है गुरमुख जिन्ना ज्ञान।

श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहजे।

क्यों थिर रह सुहाग पाई रे अवर नाही मैं थाऊं मैं तन नाम निदान है गुरु जिया बल जाऊं रहाऊं।

राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई है शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाई है हर बार सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुण चार साच मिलहो वर कामणी फिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसिया कीमत कहन ना जाए हर बार कर सोहागणी निर्मल साचै नाए मन मह मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार इकत ता गैरल मिले गल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजय गुरमुख नाम आधार खिन महे उपजय खिन खपै खिन आवै खिन जाए शब्द पछाण।

सोए गुर भंडारे पाइये निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिये पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संहार भव जल बिखमंड रावणो।

पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़ी है पी विकसै असने जल मह जी उपाय कै बिन जल मरन तने मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया।

बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ फुलिए देखी बहुत अभिमान तीर्थ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुरबिन किन समझाइए मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाइए।

गुरमुख मन समझाए नानक नाम ना विसरै छूटै शब्द कमाए। श्री राग महला पहला चित्ते दिस है तौल हर बगे बंक द्वार।

मस्तक सच निशान। बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़ै को, सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वसिया सोए। नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शना होए। ज्यों सुपने निस भुलिए जब लग निंद्रा होए, इउं सरपन कै बस जियड़ा अंतर हो मैं दोए। गुरमत होए विचारिए सुपना इहो जग लोए, अगन मरै जल पाइए ज्यों बारक दूध है माए। बिन जल कमल सो ना थी है, बिन जल मीन मराए। नानक गुरमुख हर रस

मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आनंदन भगत कर

पंखी बिरख सुहावड़े उड़ह चौदस जाए, जेता उड़ह दुख कणे नित दाज है तै दिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए। शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए, अमृत

समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए।

गुर कै शब्द जीवत मरै गुरमुख भव जल तरण वड्डै भाग नाउ पाइय गुरमत शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहया समाई एक ना मनमुख शब्द न भाव।

रहाओ। तुद संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया, वेख है कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो। प्रगट पहार जापदा सब नावै नो प्रतापदा, सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो। सतगुर कौ बल जाइय जित मिलिय परम गत पाइय,

आए जियो। हो सतगुर विट हो कुमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग पाया। नदर करे जे अपनी, आपे लैर लाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करतै आप लुकाया। नानक गुरमुख प्रगट होया, जां कौ जोत धरी करतार जियो। आपे खसम निवाजया, जियो पिंड दे साजया। अपने सेवक की पैज रखिया, दोए कर मस्तक धार जियो।

जियो हर इठे नित ध्याएंदा मन चिंदी सो फल पाएंदा सबे काज सवारियन लाहियन मन की भुख जियो मैं छड़िया सबो तंदड़ा गुसाई सेवी सचड़ा

पात बताया गुरमुख लाहा ले गए मनमुख चले मूल गवाए जियो तू वरना चिहना बाहरा हर दिसह हाजर जाहरा सुन सुन तुझे ध्यान दे तेरे भगत रते गुणतास जियो मैं जुग जुग दई ऐसे बड़ी गुर कट्टी मेहंदी जेवड़ी

तीर्थ वर्त सुच संजम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, सरहंस उलथड़े आए, जोबन घटै जरुआ जणै, वणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए, अंत काल पछतासी, अंधले जां जम पकड़ चलाया।

दरगहा सदा सुहेले। कर्म धरती शरीर जुग अंतर जो बोवे सो खात। कहो नानक भगत सोह है दरबारे मन मुख सदा पवात। श्री राग महला चौथा घर दूजा शांत। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद इयाणी पे यड़े क्यों कर हर दर्शन पिखै। हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सौहरड़ै कम सिखै। सौहरड़ै कम सिखै गुरमुख हर हर सदा त्याए। सहियां विच फिरै सुहेली हर दरगाह बां लुड़ाए। लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम के रखै। मुंद इयाणी पे यड़े गुरमुख हर दर्शन दिखै। व्याह हुआ मेरे बाबुला गुरमुखे हर पाया। अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया। बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लाधा। हौ मैं रोग गया दुख लाथा आप आपै गुरमत खादा।

दिवाया, खांडवर भांड हर सोभा होई, इहो दान ना रलै रलाया। होर मन मुख दाज जे रख दिखा लै, सो कूड़ अहंकार कच पाजो, हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देव हो दान मैं दाजो। हर राम राम मेरे बाबुला, फिर मिल तन वेल वदंदी, हर जुग है जुगो जुग जुग है जुगो, सद पीढ़ी गुरु चलंदी, सद पीढ़ी गुरु चलंदी, जुग जुग पीढ़ी चल सतगुर की, जिन्नी गुरमुख नाम ते आया।

अलाथ अपेवे निहचल आसन पाया तह जन्म न मरण न आवन जाना संसार दुख मिटाया चित्र गुप्त का कागद फारिया जम दूता कछु न चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर

आप मोहयो हो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए रिझाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियन कर बस पए मन सब सुख बुठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए

रंग रतड़ा हर रंग रत हर त्यावहो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जारिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन बन जवा

मन मूर्ख मिले सजाए, जिन जियो पिंड दिता तिस कब हूं ना चेतै, जो देंदा रिजक संबाहे, जमका फाहा गल हुन कटिए, फिर आवै जाए, मन मुख किशु न सूजै अंधले।

तू देहे तिस सब किश मिले, एक ना दूर है पास, तुद बाजहु थाउ को नाही, जिस पास हो मंगी है, मन वेखो को निरजास, सब तुदै नु सालाह दे, दर गुरमुखा नु परगास। सलोक महला तीजा।

कमाए, कूड़ कुसात कमाए, गुर प्रसादी मानजने हर से पीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मनमुख आवे जाए पौड़ी, हर के संत सुनहु जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लै हृदय राखी, हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम।

पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवे दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा।

तौ आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सार अवसर ना पछाणिया। उन्मत काम महा बिख भूलै पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख इहो मन गर्बिया राम हृदय ते खोया। अवर मर्त माया मन तोले तौ भग मुख जन्म बगोया। पुंडर केस कुसम ते

प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारिक दीन करहो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मिल कमल।

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग भौजल गुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

मन हर रंग राता हर रस पी आया हर हर नाम मुख हर हर बोली मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो आव हो संत मैं गल मेलाइए मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए।

अमृत रस सच अमृत बोली गुरपूरै अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत मिल सत संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत हर

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरा बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला। शब्द आनंद करे सद केला, सहज गुफा महताड़ी लाई। आसन ऊच सवारया जियो, फिर घिर अपने ग्रह में आया। जो लोड़ींदा सोई पाया, तृप्त अगाए रहया है संत हो। गुर अनपौ पुरख दिखारया जियो, आपे राजन आपे लोगा। आप निर्वाणी आपे भोगा, आपे तख्त बह सच न्याई। सब चूकी कूक पुकारया जियो, जेहा डिठा मैं ते हो कहया। तिस रस आया जिन भेद लहया,

तित कर सखिए मंगल गाया, आनंद बिनोद तितै कर सोह है, जो धन कंत सिंगारी जियो। सागुणवंती सावड भागण, पुत्रवंती सीलवंत सोहागण, रूपवंत सा सुगड विचखण, जो धन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई परधाने, सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने, सा कुलवंती सा सबराई, जो पिर कै रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कहन ना जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए। थिर सुहाग वर अगम अगोचर, जन नानक प्रेम साधारी जियो। माज महला पंजवा, खोजत खोजत दर्शन चाहे, भांत भांत बन बन अवगाहे। निर्गुण

धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवै जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो कर कृपा मोहे साद मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावहु गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाइये होरत कितै न भांति जियो निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूजहै पैरा गुरमुख हृदय जा कै हर हर सोई भगत एकांति जियो अमोघ दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दातारा गुरमुख नाम जपियै तित तरियै गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवां।

रह द्वारे, दर्शन पेखत मन आग हवै, नानक मिलन सुभाई जियो, माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावै, भुख व्यापै बहु विध तावै, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवै दीन दयाला जियो, सतगुर मेरा वड़ समरथा, जिये समाली तां सब दुख लथा, चिंता रोग गई हों पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो।

अतुले अकाल मूर्त अजूनी संभव मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला।

संत खेल है तुम संग गोपाला, अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो, उन संतन कै मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने, तिन कै संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अगाना जियो, माज महला पंजवा, तू जल निध हम मीन तुम्हारे, तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखहारे, तुमरी आस प्यासा तुमरी, तुम ही संग मन लीना जियो, ज्यों बारिक पीखीर अगावे, ज्यों निर तन तन देख सुख पावे, त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहु मन पीना जियो, ज्यों अंधियार है दीपक परगासा, परता चितवत पूरन आसा, मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो, संतन मोको हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया, हर हमरा हम हर के दासे, हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो, माज महला पंजवा, अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडारन हरिया, अवर साध चख सगले देखे, मन हर रस सब ते

गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त भया जिस हृदय बसेरा, गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो, माज महला पंजवा, प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो, उठत बैठत सोवत जागत, हर त्याय सगल अवरदा जियो, नाम औखद मोकौ साधु दिया, किल बिख काटे निर्मल थिया, आनंद भया निकसी सब पीरा, सगल बिनासे दरदा जियो,

बहुर न लेखा पुछ बलाया। इस सेवक कै नानक कुर्बानी सो गहर गंभीरा गौहर जियो। माज महला पंजवा सब किश कर्म है बाहर नाही। बाहर टोले सो परम पुलाही। गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जियो। चिम चिम वरसै अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द बिचारा। आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो। जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया।

जिनी दर्शन पेखा, से कर भले जिनी हर जस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हौ बल तिन संग पछाणा जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साध संग खिन माहे उधारे, किल विख काट होवा मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो। किल विख काट होवा मन निर्मल, मिट

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्यावह ज्ञानी खुदी मिटी चूका फोलावा गुरमन ही मह प्रगटाया जियो आनंद मंगल कल्याण निधाना सुख सहज हर नाम बखाना होए कृपाल स्वामी अपना नानक नाओ नानक कर्म है आया जियो माज महला पंजवा।

सो सच स्वामी रिजक सब सकौ दीए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाई है, सब भौ बिनसै हर हर त्याई है।

सगल मनोरथ पूर्ण होए, कदे न होए दुखाला जियो। माज महला पंजवां, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दै दिस वरसाया। शांत पई बुझी सब तृष्णा, आनंद पई।

गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाहया जियो माज महला पंजवां सो सच मंदर जित सच त्याई सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई सा तरत सुहावी जित वसह हर जन सच्चे नाम बिटहु कुरबानो जियो सच बडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना।

सबल इहा है कारी जियो, दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजी

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पाणी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना। प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अन दिन नित जागी। बहा पकड़ तिस स्वामी मिले, जिस कै मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन बुठे, विण परमेश्वर सगले मुठे। संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइय,

ठाक रहाया, गुरसाखी मिटिया अंधियारा, बजर कपाट खुला बनिया, होमै मार मन वसाया, गुर चरणी सदा चित लाया, गुर कृपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम त्या बनिया, जीवन मरण सब तुदै ताई, जिस बख्श

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

मनमुख भरम भुलावणिया आपे देवै शब्द बुलाए महली महल सहज सुख पाए नानक नाम मिले बड़ियाई आपे सुन सुन ध्यावणिया माज महला तीजा सतगुर साची सिख सुनाई हर चेतहो अंत हुए सखाई हर अगम अगोचर।

अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनया मन मुख भूला दूजै पाए खुआए नाम न ना लेवै मरै बिख खाए आन दिन सदा विष्टा महवासा बिन सेवा जन्म गवावणिया अमृत पीवै जिसनों आप पी।

काई बिख बिहाज है बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खा बणिया गुर प्रसादी को जाना दूजा मार मन सच समाना।

गुरमति आप बुझावणिया रहाउ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेव्या प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया।

मिलै ता चूकै फेरा, जां तुद भावै ता नाय रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, एक सिउ लिव लागी।

अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावणिया अकथो कथिया शब्द सुहावे गुरमति मन सचो पावे सचो सच रवह दिन राती इह मन सच रंगावणिया।

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कहे कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन विद

गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया।

रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिन कौ रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर

हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया हो वै जंत सर्व कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थाओ हर ओट गही मन अंदर।

मैं मर जाती। गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती। तू आप सुजान है वट पुरख बिडाती।

महला पहला। नारिजक दस्त आकसे हमारा एक आस बसे, अस्त एक दिग्र कुई एक तुई एक तुई। महला पहला। प्रंदय ना ग्राह जर द्रखत आब आस कर, देहांद सुई एक तुई एक तुई। महला पहला। नानक लिलार लिखे।

आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्म विच रखै नानक सच्चा आप पौड़ी सतगुरु।

समर्थ है कहो नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार पौड़ी खसम कै दरबार ढाडी वसया सच्चा खसम कलान कमल विगसया खसम हूं पूरा पाया।

आप बुझाए सोई बुझै, जिस आप सुझाए तिस सब किछ सूझै। कह कह कथना माया लूझै, हुक्मी सगल करे आकार। आपे जाने सर्व विचार, अखर नानक अखयो आप। लह प्रांत होवै जिस दात, पौड़ी

भगत करह मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप है बहुत दुख पाव है। नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवे जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जो नहीं पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वस्या मन आए, आन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरै पर

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्याव है हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुन।

दिन सजाए पूरा कछ पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साद है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्त।

हर नाम मन चित नित ध्यावहो, जन नानक जो अंति अवसर लै छाया। गौड़ी बैरागण महला चौथा, जिस मिलिय मन हुए आनंद, सो सतगुर कहिय

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आ गए ज्यों हर राख त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर

हर हर अर्थ शरीर हम बेचया पूरे गुर कै आगे सतगुर दाता नाम दिढ़ाया मुख मस्तक भाग सभागे राम गुरमत हर लिब लागे रहाओ कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिब

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासयो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया धारी, तिन जम जोहन लागे, उन सतगुर आगे सीस ना बेचया, ओए आवह जाहे अपागे, हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर, हम

मिल पूर्व लिखियड़े तुर करमा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो।

इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसन हार पंच।

लाथी भूख तृष्ण सब लाथी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे तहरे ओ, मन जीतो जग सारी, तृप्त अघाए।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ।

कहावों रिद सिद्ध बुलावों ताज कुल है सिर छतर बनावों बिन जगदीश कहां सच पावों खान मलूक कहावों राजा अबे तबे कूड़े है पाजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सब

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट।

सहज घर आवह। राजन जान परम गत पावह। सच करनी गुर भरम चुकावह। निर्भउ कै कर ताड़ी लावह। हों हों कर मरना क्या पावह। पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावह।

पूरा गुर पेटे सो झगर चुकावे, जेती है तेती केहो नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही। हमें बंधन बंद पवावै, नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काल कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया।

सी अलख अपेवा। सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, ना मोह भूले जम का दुख सहना। मैं तार नाम ज्यों राखो रहना,

चालह गुरमुख हुक्म रजाई, रह अतीत सच्चे शरणाई। सच कर बैसै काल न जो है, मन मुख कौ आवत जावत दुख मोह रहाउ। अपयो पियो अकथ कथ रहियै, निज कर बैस सहज कर लहियै। हर रस माते इहो सुख कहियै,

हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रब पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निहचल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे भरम चुकाया, जिन कै मन वसया सच सोई, तिन की संगत गुरमुख होई।

परम सुख तारा हित उतराख हो दीन दयाला तौ शरणागत नदर निहाला रहाओ जह देखो तह रव रहे रख राखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अंधियारा जग बिन सत हम देखया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज घर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझे सुख होई।

मिल आप गवाइए, नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावे, नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे। गौड़ी महला पहला, गुर प्रसादी बूझले तो होए निबेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा, बिन गुर शब्द न छूटी है देखो विचारा।

रोता, आवत कौ जाता, कहे जाते कौ आया। पर की कौ अपनी, कहे अपनों नहीं पाया।

आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिए सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदियां।

मन निर्मल होए, सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै न जन्मै काल न खाए, शास्त्र सिमरत सोध देखो कोए, बिन नामै को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कलमह गुरमुख उतर सपार, साचा मरै न आवै जाए, नानक गुरमुख रहै समाए, गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हिरदय उर धारा।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

धारै, गुर कै शब्द पंच संघारै, आप तरै सगले कुल तारै। माया मोह नत बाजी पाई, मन मुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई, बहुते भेख करै भेख धारी अंतर।

दुख खाए, जम डंड सह है सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई।

मांग है लई हर आपे कृपा करे नाम देवै गुरमुख रतन को बिरला लेवै नानक गुण गावै हर अलख अपेवै।

मन कर हला सतगुर पुरख ते आए रहाओ, मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथे लेखा मंगिए हर आपे लै छाए, मन कर हला अत निर्मल।

मन कर हले हर तरवर पुरख अकाल वड भागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा अष्टपदियां एक ओ अंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना जब एहो हुआ सगल की रीना ता तेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला।

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किछताता। जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा। जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया। जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी। जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सतगुरु मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किश एक है।

कृपा होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहरै।

दिन सबेताला गिर तार धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत।

लोगा, जात वर्ण तुर्क अर हिंदू, पश पंखी अनक जोन जिंदू, सगल पसार दिसै पासारा, विनस जाए गो सगल आकारा। सहज सिफत भगत तत ज्ञाना, सदा आनंद निश्चल सच थाना, तहां संगत साध गुण रसै, अन पौ नगर तहां सद वसै, तह पौ परमा सोग ना चिंता, आवन जावन मृत ना होता, तह सदा आनंद।

समाहे। जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजहै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सो ई जति, जो इस मारे तिस हो वै गति।

जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सो ही सो ज्ञानी, जो इस मारे सो सहज ध्यानी,

धर्म घाती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया कहो नानक गुर जगत तराया।

समानिया मिल सखी सहेलड़ी हो हम फिर रावेहा गुर पुछ लिखोंगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जाता रह आसिर जाम सच पछाणिया।

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक।

होवनहार होत सद आया, वाता अंत ना काहू पाया। कीट हस्त महपूर समाने, प्रगट पुरख सब ठाऊ जाने। जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर तिह जपना। सलोक

पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ दे कल युग मह पाया फिर या अवसर चरै ना हाथा नाम जपह।

होत सब जाकी, तज अभिमान छुट्टै तेरी बाकी। रण दरगाह तौसी जह पाई, जो गुरमुख राम नाम लिवलाई। रहत रहत रह जाहे।

अखर महंत्र पवन प्रवत हरे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा।

सखा अगयान भंजन गुरुदेव बंधप सुहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरुदेव मंत निरुधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव

रह चलै जह मुश्किल होवै अत पहारी हर को नाम खिनमाहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावहो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख

निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन।

काल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिनतु साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।

दयाल। करतूत पशु की मांस जात, लोक पचारा करै दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, शब्द नाहे कछ करै छिपाया। बाहर ज्ञान

मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहै, मिथ्या हस्त पर दर्व कौ हिरहै, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद,

खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए।

बृहस्पदी मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आए मारे राखे को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म।

रखै ओट गही संत है दरियाया सर्व सुख नानक तेह पाया मृतक कौ जीवा लनहार भूखे कौ देव ते आधार।

आप अष्टपदी जब अकार एहु काश नाम दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत।

माए बाप मित्र सुत पाई, जह सर्व कला आप है परवीन, तह वेद कतेब कहां को चीन। जब अपने आप आप उरत हारे, तो शगन अपशगन कहां बिचारे। जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हूँ आप। जह अशल अशेद अपेद समाया, ऊहां किसह व्याप्त।

पार राम नाम अंतर उर तहार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया मन तन नाम जप होले वलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच वा पार कर हुआ पारी दरगह निभै खेप।

सृष्टम। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान।

तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगाए तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावे पौड़ी, जो तुद सच ध्यान दे से बिरले थोड़े, जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े, तुद नो सब ध्यान दी।

सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे

ए हर वस्त संभाले नाम निधान हर बन जीए हीरे पर वाले विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड़ बेताले से उजड़ परम पवाई है ज्यो चाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मह होया।

कहै बड हम ही जिसह बुझाए सोई बूझै बिन बूझे क्यों रहिए सतगुर मिले अंधेरा चूकै इन विद्मान कलहिए।

जह अबोल तह मन न रहावा। बोल अबोल मद है सोई, जस ओहो है तस लख न कोई। अलह लहो तो क्या कहो, कहो ताको उपकार। बटक बीज महरव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार। अलह लहंता अलह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद। उल्ट भेद मन भेदे पायो अभंग अशेद।

ढूंढ जब आवा। जेह गढ़ गढ़े हो सो गढ़ मह पावा, जेह गढ़ गढ़े हो सो गढ़ मह पावा। नाना रण रूतो नर ने ही करे, ना निवै ना फुन संचरै।

जे बहुता समझाइए पोला, पीसो अंधो अंधा रहाओ। लख खटिया है, लख संजिया है, खा जाए।

रहाओ। हर हर हार कंठ ले पहरे, दामोदर दंत ले, कर कर करता कंगन पहरे, इन विद चित तहे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे, परमेश्वर पट ले, धीरज धड़ी बंधा।

जीवत दिसै तिस सर पर मरना मुआ होवे तिसने चल रहना। जीवत मुए मुए से जीवे हर हर नाम।

सम्हारे। एको एक आप एक एक है सगला पासारे। जब जब होए सगल साध जन एक नाम तिहाए बहुत उधारे।

कटे कन्हेरे सुख सहज आनंद घना गुर सेवा ते भय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहा।

योग तिस है अराध मना बिनाशय सगल रोग राखन हार अपार राख अगन माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाय।

सच अमली आसा महला पंजवा उद्दम किया कराया आरंभ रचाया नाम जपे जप जीवना गुर मंत्र दृढ़ाया पाए पर है सतगुरु कै।

आढ़ आढ़ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल तृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

सारा, अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए ना फेरा, पारखियां वथ संभाल लई